जोचोलो पाथौ नेपाल सम्बन्ध चिन्छ सौ पी खुद जला थो पारु थो रेडियो नेपाल ख आनेनादिस चिरुबी पाखे नेपाल भाषा समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलापा मधेसी आयोगका दक्षिया प्रतिवेदन 2082/83 अध्यक्षीय प्रतिवेदन दुत बिगु दुसा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास मिघ गोसागोको चियासोले राष्ट्रपति पौडेल नापा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवन शाह प्रतिवेदन दुत बियादी गुख। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह असोज 8 गते नेपाली प्रतिनिधि मण्डल जान न्युयोर्के च्याटिङगुदु। न्युयोर्के संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालय गोसागोइको महासभाया जनरल डिवेट कथा 24 सेप्टेम्बर 2026 नेपाल थासा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह क घना दि गु ज्याजो दुको परराष्ट्र मन्त्रालय मिग गोसागोको नियमित पत्रकार सम्मेलन पाखे परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर रायन जानकारी बियादिगु ख। महासभासँग आतक हलिया चे छगु देया राष्ट्र प्रमुख नेगु देया सरकार प्रमुख पिन्स बुती काइगु कोछिगु परराष्ट्र सचिव रायन जानकारी बियादिगु ख। परराष्ट्र मन्त्रालय कथा नेपाल थुगुसी महासभा राजनैतिक ह्युपा लिपाङ्गु इले देशम फया चोने मागु प्राकृतिक हाठ्या व जलवायु न्याय तथा बिया सल हुनिगु कोचिगुदु। हरित गृह ग्यास उत्सर्जने अल्याख भाला दुसाना नेपाल तधङ्गु कष्ट फयाचोने मागुली हानी व नोक्सानी कोस थठे राहत बि मागु नेपायको छिना जुइगु स जुइगु थागुदु। प्रतिनिधि सभा याम हिगो चङ्गु बैठक नेपाल कानुन आयोग ढापाङको संशोधन विधेयक 2083 दुते विचायामा धैगु प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृति आगुदु। थोयानीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम नेपाल कानुन आयोग यता विधेयक दिएको मस्यौदा यायागु निकाय कथा तव्याकिता सनागु ध्याय दिगु दुसा प्रतिनिधि सभासँग संसद यसा नेपाल कानुन आयोग नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 दथि विचायामा धेगु विधेयक दथि संसद यसा तगु सैद्धान्तिक सलसन हुङ्गु नेसतेगु लिसबिया दिसे मन्त्री गौतम नेपाल कानुन आयोग यता आधिकारिक कथा।

विधेयक दिएको मस्यौदा दिएको निकाय कथा विकास याना विधेयक क घा मागु ध्यादिगु दुसा अध्ययन बैठक प्रतिनिधि सभा सचिव प्रकाश अधिकारी नेपाल विशेष सेवा एन 2042 साबिका व्यवस्था केनीगु नापाया विधेयक 2083 विशेषण राष्ट्र सभा समूहको हसनाया जानकारी ब्यादिगु ख बैठकसँग कर्मचारी सञ्चय कोष झिकगु संशोधन विधेयक 2083 दति विचार यामा दैगु प्रस्ताव बहुमत स्वीकृति आगु ख विधेयक दथे विचार यामा धेगु प्रस्ताव दथु सैद्धान्तिक सहलसँग संसद हिंसयालिसा ब्यादिसे अर्थमन्त्री डाक्टर वागले नापाको स्याठेवासँग विमान न्याबले जुगु लगानी बामलागु दसु जुगु धया दिसे वैगु दिने राजनैतिक अभिष्टसँग प्रेरित लगानी या कोछिना या यता सरकार मोजको खर्च यागु थ्वात्फिका दिल मन्त्री डाक्टर वार्ले विधेयकको स्वायत्त सञ्चालक समिति संरचना ओमिसा तेगु बोटी विशेषण होङ्गु नेसालिस बिहा दिसे दफावार सलया झोले संशोधन पाके कग्या फैगु थया दिगुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता सप्तरिया राजविराजे गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल मु गेट पिने छमा मिसा मचा बुइकगु झाँका या विशेषण सस्ते तथ्य दुवाला चोनागु ध्यादिगुदु प्रतिनिधि सभा बैठके हिग संसदेशु न्यासालिस मेहता चाका जुगु इले ड्युटी खे चोना चोपी कर्मचारी तेता ज्यास चिकागु छानबिन समिति प्रतिवेदन वेद हुङकानी दोषी उपर कारवाही आएको ध्वात्विका दिल सरकार माओ ह्याउमचा शिशु या सुरक्षा यता थ्या विषय वया चोनागु थासे मन्त्री मेहता मिसा तेता फाथे दुगु इलनिसे मचा विके धुङ्कानी तक्क न ढेवा म्याक सेवा बिहा वया चोनागु थ्वाथ्विका दिल बैठकके सभामुख नपा विशेष यी फोना नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सांसद वर्षमान पुनः भोटेकोशी खुसी बा सम्फसे जोया चौपी हो तना चौपी मनो तेता अझ उप माले ता ज्या मज्जिक निजाकेता सरकार नापा इनाप्याना दिगु दुसा थुया न्याया बैठके मधेसिया विद्यालय तेके विद्यार्थी लिया उप व शिक्षक दरबन्दी मोजु या शिक्षा गुणस्तरे लिचोलाना चोङ्गु धासे तराई मधेसिया विद्यालय तेके विद्यार्थी लियाके शिक्षक तेगु व्यवस्था या त सरकार नापा इनाप्याना दिल बैठके आकाङ्क्षाका इले संसदेशसँग गरिमा चौधरी बलात्कार लिपा स्यागु व ढावापी अपराधी त्यता कारवाही यागु पलिसा उन्मुक्ति बिगु मिसातेसँग अझन सडके मचा विका चुने मागु अवस्था दुगु नसा जोरे यागु ग्यासिया हकुगु बजारी जुया चोङ्गु धासे अपराधे लावापी त छक्क कारवाही या त सरकार या ध्यानको सल्लाह दिल प्रतिनिधि सभा मेगु बैठक थोहे भदौ 30 गते मङ्गलबार हिनेसिया छताइले चुनिगु गोसादु महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादी खुसी बा लिचो लागु लाग्यो मिसा मचा मस्तेको सुरक्षा गोपनीयता हो अधिकार संरक्षण यता थ्या बी मागु ध्यादिगुदु प्रतिनिधि सभा कथया महिला तथा सामाजिक मामिला समिति मिगचङ्गु बैठकके मन्त्री वादी मानव बेचबिखन तथा गैर कानुनी ओसार पसार व विस्थापित मचा मस्तेको नीति कानुन अख स्थान्तरण यता सोहीको जोखिममा जागु लि दिके मागु खे समन्वय या त इनाफ्याना दिगु ख उगु बैठकके खुसीबा लिचो लागु लागा अनुगमन्या झोले मचा मस्त मचा विकी पि मिसा व थकाली पि मनुतेके पौष्टिक नसा जोल व स्वास्थ्य सुविधा या मुह खनेदया चोङ्गु लि थत्ते पौष्टिक नसा जोल वास व आकाङ्क्षाका वास व्यवस्था या त संसद तेगु ध्यानको सल्लाह दिल रसवाया भोटे कोशी खुसी थोए भदौ 10 गते ओगु विनाश जागु खुसीबास लिचो लागु लि शिक्षा लागा पुनरुत्थान या नीति सरकार निगु अर्ब सुई पेङ्गु करोड सुई निगु लाख छिन्ने दुस देवा तुगु अनुमान यागुदु राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व व्यवस्थापन प्राधिकरण नपाया मङ्का प्राविधिक पुच सन्देकु याक्न शिवे याक्न क्षति व मागु कथ यु ज्याया प्रतिवेदन कथ खुसी वासन झिन्च्यागु बने कुठीखे लिचो लागुदु गुकी झिन्छगु विद्यालय ज्याखे मलाइगु कथा स्याङ्गु दुसा नेगु विद्यालय आंसी कथ पचिचा स्याङ्गु थागुदु भोटेकोसी खुसी बाया लिचो लागु
थासे सरकार खोज उद्धार व राह जाया नीति थगु पहुँचे दुगु फुक हल जोलौ व ज्या व छेला चोनागु धागुदु मालेगु उद्धार व राह ज्याके भारत चीन कोरिया गणतन्त्र या सुरुङ उद्धार पुच त्यस नेपाली सेना जाना समन्वय याना ज्यान ह्याका तगुदु स संयुक्त अरब इमिरेट्स खोज तथा उद्धार पुचस मलेसिया विशेष विपद सहायता व उद्धार पुच अस्ट्रेलिया यथास विपद सहायता व प्रतिक्रिया पुच स ग्वाली बिया चुङ्गु दुसा आलिचो लागु जलविद्युत आयोजना व मेगु लाग्या जलखला व मित्र राष्ट्र तेस बिगु उपकरण ड्रोन डोलर ड्रोन लोडर व मेगु हल जोल छेला ज्याखे ग्वाली जुया चुङ्गु परराष्ट्र मन्त्रालय गोसागु पत्रकार सम्मेलनले जानकारी बिगु खसा सीमातेको व्यवस्थापन व मसिका नीति भारत चीन जापान सिङ्गापुर कोरिया गणतन्त्र या फोरेन्सिक पुचतेसन डिएनएस मुङ्केगु विश्लेषण व मसिका यता आपल हिजाका चोनेता नेपाल प्रहरी व मेगु स्वाफुदुगु अधिकारी नापा मिले जुए ज्याना चोनागु जानकारी उगु पत्रकार सम्मेलन सम्बिगु ख पोटेकोसी खुसी बाल निचो लागु लाग्या अंश उप विशेषज्ञ चिकित्सक या पुचो खटिया गुदु भोटेकोसी खुसी बास निचो लागु लाग्या मातृ व बाल स्वास्थ्य सेवा यता अंश बाल्ना के गु नीति विशेषज्ञ चिकित्सक तेगु पुच छो गु ख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह व न्युजिल्यान्ड या प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सन दथी टेलिफोन के खलावाला जुगुदु प्रधानमन्त्री शाह थमा समकक्षा त भोटेकोसी खुसी बालिपा खोज उद्धार राहत पुनस्थापना या ज्यादेखि आप्ल ग्वाली बिया दिगु जानकारी बिया दिसे न्युजिल्यान्ड या मनु त नापा तना चोपि विदेशी ते गुमालेगु ज्याता आप्ल थ्या बिया चुनाको ध्याय दिला प्रधानमन्त्री शाह न्युजिल्यान्ड न्युजिल्यान्ड लल हागु निगु लाका न्युजिल्यान्डर डलर बराबर या मानवीय ग्वाली या नीति प्रधानमन्त्री लक्सन या तल सहना नापा देशना दिल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा राइट टु रिकल नापा या दस्तावेज देखेको नीति समिति निसुङ्गुदु रासोपा हिग राइट टु रिकल नापा या दस्तावेज देखेको नीति पार्टी महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य समजगते छिन्छमा दुजा समिति निसुनागु पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेला जानकारी बिया दिगु ख रासोपा या वङ्गु भदो पाँच गति या केन्द्रीय समिति या बैठक या कोचिना कथन थो समिति निसुनागु प्रवक्ता खरेला जानकारी बिया दिगु ख नेकपा एमाले निर्वाचन समीक्षा व पार्टी पुनर्गठन कार्यदलीय बैठक मिग पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासले चोङ्गु ख बैठकीय कार्यदलीय संयोजक रामबहादुर थापा निगु ब्याग्ल ब्याग्ल डकुमेन्ट्स न्यवयादिगु ख स छगु महासचिव या थासङ व मेगु जिगु तासे वैक्लान्त दस्तावेज न्यवयादिगु ख निगु तल डकुमेन्ट्स या त छगुहे देका कोचिना यागु थागुदु भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सरकारी व सार्वजनिक जग्गा छानबिन नापा समस्या नापा उच्चस्तरीय आयोग रावल आयोग या प्रतिवेदन 2052 केना तगु फुक सरकारी व सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकार नामे कायम यागु कोचिगुदु पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भोटेकोसी खुसी बाया हुने बोलङ्गु असामान्य व प्रतिकूल लकस सार्वजनिक यातायात लाग्या जुग मानवीय व भौतिक क्षेत्रीय मूल्याङ्कन यातायात समिति निसुङ्गुदु प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषे आतक झिन सोङ्गु अर्ब नि सोङ्गु करोड झिगु लाख चे छदो निसो व खुइ नेतका टेवा मौजादु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कथ मिग तक्क न्याता इ तक्क या धल कथ थिथि गुगु बैङ्के गुगु अर्ब खुइ च्यागु करोड नि सोङ्गु लाख ङे ङ्यादो नि ङ्याका मौजादु भोटेकोसी खुसी वो गु खुसी बा सलिचो लापी मनोतेता राहत उद्धार व पुनस्थापना नीति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण झिङ्ग्यागु करो ढेवा ग्वालियागु दु प्राधिकरण थो ढेवा प्रधानमन्त्री देवी प्रकोप उद्धार कोसे मुङ्के गु कोसी गु दुसा अथे याना नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ गुई गुगु लाख चे पेदो खुस व गुई ज्ञातका थेवा मुङ्कगु दुसा म्याग्दिया बेनी नगरपालिका रसुवाया भोटेकोसी खुसी वो गु या त राहत कथ भदौ दस गते वो गु खुसी बाया नीति पिगु लाख ग्वालिया गुदु
स्याङ्जाया गल्याङ नगरपालिका सातो एघार याता स्वाइगुयाना आँधी खोला दत्थी झुलुङ्गे ता देकगुदुक गल्याङ एघार या बुढाथोकी डाँडा वा ओडा नम्बर सात या सेना पुक याता स्वाइगुयाना पेसा वा पी पेङ्गु मिटर ता हागु ता देकगु ख पोखरा महानगरपालिका पृथ्वी चोके दुगु प्रस्तावित पोखरा बस पार्क लाग्या बाचना चौपी भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रिया निजा कगुदु महानगर यागु छानबिन याली पाङ्गु प्रतिवेदन कथा आतक बस पार्के सोसो निङ्यामा छे ज व भूमिहीन निस व पी निमा छे ज अव्यवस्थित बसोबासी पिन्चोना चङ्गुदु पशुपति लागा विकास कोष पशुपतिनाथ ड्यगले थुगुसिया तिजिया ज्या झ्याकगुदु पशुपतिनाथ ड्यगले ड्याङ्कसँग वैपी श्रद्धाजुल भक्त जनपिन्ता व्यवस्थित अफुगु कथन दर्शन व पूजा आजा यकेगु नीति सल व्याकगु ख थुगुसी हरितालिका तिज थोए भद 29 गते सोमबार खुन लागुदु युवा साहित्यकार इन्द्रबहादुर चौधरी या त युवा द मोती शिर्पा 2082 सँग हङ्गुदु नेपाली शिक्षा परिषदम गोसा गोगु सचियो खुई छकगु मोती जयन्ती ज्याजो साहित्यकार चौधरी या थो शिर्पा लल हागु ख आदेशम्पिनिया बुख युक्रेनिया अधिकारी तेगु कथन डिनी प्रोटेट्रोभक्स लागाया पाब्लो हिराइट या छगु पसले रुस यागु ड्रोन हमला लाना यामा मनु सिगु नपामेगु खुइ नेमा मनु खापाजुगुदु युक्रेन मध्ये पूर्वी हेनासोङ्गु ल्वापु अमेरिका चीन या कचौ या दते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बुटिका त ब्रिक्स राष्ट्रिय नेता पिसान हु दिल्ली बुटिका चङ्गुदु आ मौसम जानकारी थौ कोशी लुम्बिनी व सुदूर पश्चिम प्रदेश तराई या छुन्थासे व मध्य प्रदेश व बागमती गण्डकी प्रदेश तराई या मोथासे मलनापान लाप्सातोया मध्यम तकया वाविगु सम्भावना कुबिगुदु कोशी व बागमती प्रदेश हिमालय पहाडी लागा व गण्डकी कर्णाली प्रदेश पहाडी लागाया नापा लुम्बिनी प्रदेश तराई व छुन लाग्या छगुनिगु थासे आप्लाउ वाविगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापुदु वङ्गु निपे घौसा ये सोनिगु या क्वाज निच्यागु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस दति लुल धासा थौ निने ये सोनिगु या क्वाज निच्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस दति चोनी थौ सुथे ये सोनिगुले सुथे स्याङ्या ता इजु या पी छगु मिनेटे लुया वगु सूर्य शनि ल खुता इजु या छिन्नेगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुवन छिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिसा शुभ

छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ सानगिर रिराङ्गी दा झेनमुला गैन्दिरा थिङ संयुक्त राष्ट्र संघला ब्रेचुई गिक छ ग्रेन वाल्डी पोकिनबारी काइब्लोन बालेन र सहला गोबाङ्री ग्रेन स्तरीय नेपाली मुल्मी थेत्मा न्युयोर्क निस्यु बाके कोर्मुला न्युयोर्कला संयुक्त राष्ट्र संघला घेजाङ्री सेङ्बा ग्रेन वाल्डी असोज निस्ला कुनो नेपाल वानाग्याम काइब्लोन बालेन्द्र साहसे लेङ्मो थान्च्युबा गेकोर मुलाबिसी रुङसा ब्लोन खाङ्री सेङ्बा सानगिरु बोन वाल्डी पाङबा मुला ग्रेन वाल्डी दाते धोना जाम्बुलिङला गोर ब्रेचुई गिक ह्युल्ला ह्युल ग्रेनपो थेनाङाचुई ह्युल्ला सरकार ग्रेनपो कादेसे पो किन्बा ताबा मुलाबिसी रोङसा लोन अमृत बहादुर राई से सुङबा मुला रोङसा ब्लोनखाङसे पाङबा अनुसार चुरेमला ग्रेन वाल्डी नेपाल से दाते नातोबा समस्या प्राकृतिक विपद तेन जलवायु न्यायला ताम तेबा ताबा मुला रसुवाला भोटेकोसी घान्दिरी खाबा भालग्याम नेपाल से ग्रेन छेती नातोबा धुरी जलवायु पोबासे ताबा हिन्ला भिबा ताम जाम्बुलिङदान थान्से दामुला रोङसा ब्लोन सिचिर खनालसे नेपाल चीन ब्रेलबादा ओइमाला मुर व्यवस्थापनला तामदा ख्लाबन पर्यावरणीय सहकार्य जलवायु सुरक्षा प्राविधि छोङथेन पूर्वाधार विकासरी आधारित रणनीतिक साझेधारीला रूपरी गाछा बोर्सी नितोला विशी सुङबा मुला फाउन्डेसन फर पिस डेभलपमेन्ट एन्ड एसो लिजम से तिनी सेङबा गेकोरी लेङ्मो थान्सिबान ब्लोन खनालसे भोटे कोसिला भालसे नेपाल चीन गुङला मुर ग्लेटिम मुर जेखेन आताना स्यान्दो लानन युल निला ब्रेल्बा कोङबा सोबान थुइबा थुम हिन्ला बिसी सुङबा मुला चुभदौ चुइला कुनु भोटे कोसी भाल्दा हिमालयन सुनामी विमान रोङसा ब्लोन खनाल से विपद लिछाला उद्धारी चीन सरकार से पिनबा रोदा थुजे छे सुङबा मुला नेपाल दिस्युबा चीनला ग्लेबोन चाङ माओ मिङ से चीन थेन नेपाल से जलवायु पोबा निनोन युल्ला समस्या ताबासे ग्ला घिक्रिन राप्सी गाछा नितोला बिसी सुङबा मुबा रसुवाला भोटे कोसिरी चु भदौ चुइला कुनु खाबा भालसे लामा गोर चुइनी बेङ्गला गोर चुइनिस शाखा प्रभावित ताबा मुला राष्ट्रिय योजना आयोग थिएन युलबाङ विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से शोभा प्रतिवेदन डी मोकोन भीमा लाना कृषि विकास बेङ्गरी क्षेत्री ताबा मुला नुवाकोटला विदुर नगरपालिकारी बेङ्गला गोरब्ली शाखारी करोड डुचुइनिसे लाख चुई सोमला क्षेत्री ताबा मुला रसुवाला गोसाईकुण्डा गाउँपालिकारी गोर चुइगिक शाखारी करोड ब्लिसे लाख निचुइसोम रसुवालन कालिका गाउँपालिकाला गोर्की शाखारी लाख निचुइब्रे होजन जोङला उत्तर गयारी मुबा गोर्की शाखारी निचुइङा लाख क्षेत्री ताबा मुला रसुवारी भदौ चुइला कुनु खाबा भोटे कोसी भाल लिछा प्रभावित थुमग्याम दाते दोना तोङ चुइसोम ग्यार्जा डुसे मेन्दो निला उद्धार लाबा मुला तोङा बिमा लाना मिनी सम्पर्करी खाबा आरे युलबाङ विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से पाङबा अनुसार भाल ग्याम सिबा कादे तोङ गिक ग्यार्जा सोमसे मेन्दो ब्रेचुई डु धोबा मुला उद्धार लाबा कादेरी घाइतेला लोलो लोलो अस्पताल डी मान लबान मुला दाते दोना गोर चुई कु अस्पताल डी ग्यार्जा सोमसे मेन्दो सोमचुई सोम मिनिला मान लबान मुला बिसामे ग्यार्जा निसे डुचुई डुचुई डुचुई मिनी उपचार लासी डिस्चार्ज ताबा मुला बिसी प्राधिकरण से पाङबा मुला काइब्लोन राहत कोश्री नोर रो खाबन मुला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङझाङला गेजाङसे पाङबा अनुसार तिनी स्योला कु न्यामा धोना कोस ला खातारी अर्ब चुई सोम करोड गाचुई ब्लिक लाख कु तोङ सोम ग्याजा गिक्से सिका चुइनिस झम्मा ताबा मुला चुटाङ्गा काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोसला लोलो लोलो गोरकु बेङ्क्री मुबा सरकारसे चु गाछा होजा कोस ग्याम भाल पीडितला मिन्डी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण ग्याम अर्ब गिक पुइसी झिन्बा मुला रसुवाला भोटे कोसी गान्धीरी खाबा भालसे प्रभावित मिनिदा राहत उद्धार थिएन पुनर्स्थापनारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण से करोड चुइङा टाङ्गा रो लाबा मुला प्राधिकरण से होजा टाङ्गा काइब्लोन दैवी प्रकोप उद्धार कोश्री थान्बा निर्णय
लाबा अनुसार नोर ब्लोन खाङ रिसेङ बाघ्य खोरी चेक पिन बाहिला सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ला ओन छाङरी प्राधिकरण ला चोहो अर्जुन घिमिरेसे करोड चुइङहा ला चेक नोर ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले दा पिन शिवबा मुबा भोटे कोशी गान्धीरी खाबा भाल ग्याम रसुवा नुवाकोट छ्याम स्यान्दो तिलाई झोङरी ग्रेन छेती ताबा लिछा प्रभावित मिनिला उद्धार राहत थिएन पुनर्स्थापना री सरकार थिएन लोलो लोलो थुम ग्याम रोका दे खाबन मुला चुराङ लासिन भोटे कोशी भाल पीडित कादे दा बाँके जोङला प्राइभेट लोपखाङ कादे थिएन अस्पताल कादे ढिक्सी करोड घिक्से लाख निचुइ घा भीमा लाना रो लाबा मुला निजी थिएन आवासीय लोपखाङ प्याप्सन बाँकेला लोपखाङ कादे से लाख डुचुइ घा थिएन प्राइभेट अस्पताल कादे से लाख डुचुइ से तोङ निश्चुइ भ्रे ग्यार्जा घासे सिका चुइ सोम रो लाबा हिला राज विराजला गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल डी भर्ना ताबा धुइरिन अस्पताल गाछाला सडक घ्यालामला पेटिरी कोला नाबा घटना सार्वजनिक ताबा लिछा चुताम्री संघ प्रदेश थिएन जोङला लासी गोर सोम छानबिन समिति शोभा मुला च्याबा साइबा समिति से होजा धुइरी गेरी खर्दीबा डाक्टर चौकीदार सफा लबा मिनी कादे थिएन गे तेनबा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जितेन्द्र कर्णेल थिएन युबा गोबा लासी जिनबा मुलाबिसी अस्पताल प्रशासन से पाङबा मुला मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर झासे घटना ताबा कुनु अस्पताल ला प्रसुदि वार्डी गे लाबा मेन्दो ब्ली डाक्टर मेन्दो गिक चौकीदार थिएन मेन्दो गिक साफा लाबा मिनी लासी मेन्दो डुदा तेबा मुला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपासे राइट टु रिकल ला दस्तावेज सोबारी समिति शोभा मुला रासोपासे तिने राइट टु रिकल ला दस्तावेज सोबारी पार्टी लोन्चेन विपिन कुमार आचार्य ला थुतबोन्डी चुइगिक सदस्य समिति शोभा मुला बिसी पार्टी ला सुङबोन जगदीश खरेल चे सुङबा मुला रासोपाला निभा भदौ घाला कुनो चिबा मियो समितिला निर्णय अनुसार समिति शोभा हिनला बिसी सुङबोन खरेलसे सुङबा मुला गोर्खा पत्र सेस्योला गाछाला सम्पादक सानगिर बोन युवराज गौतम डुचुइ डु दिङरी ढुङसिउबा मुला लुइरी समस्या ताबा लिछा तिनी स्योरी बलम्बुला नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल डी मन लबन लमा सिबा हिला इलामरी सन 1960 री केस्युबा गौतम दा नाङ्गर मे पिनबा गेखोर मुला पोखरा महानगरपालिका पृथ्वी चोगला प्रस्ताव लाबा पोखरा बसपाक थुम्री चिबा सा आरेबा थेन खारङ दामन चिबा कादेदा चिबा ग्ला ढिक्ना लाबा गे तिबा ताबा मुला महानगर से लाबा च्याबा साइबा लासी शोभा प्रतिवेदन डी दाते धोना बसपाक री ग्यार्जा सोम्से निचुइ घा सा आरेबा दिम थेमे थेन ग्यार्जा निसे ब्लिचुइ नि दिम थेमे खारङ दामन चिबन खाबा मुला महानगर कार्यपालिकाला चिसाङसे सा आरेबा थिएन खारङ दामन चिसी खाबा मिनिला विवरण प्रभावी करण लासी झिन्बा मुला महानगर ग्रेनपो धनराज आचार्य से बसपाक थुम्री मुबा सा आरेबा कादेदा चिबा ग्ला ढिक्ना लाबा मुला बिसी सुङबा मुला सल्यानला त्रिवेणी गाउँपालिका गा सिमकारी बलेरो जीप दुर्घटना तामा मेन्दोसोम हिनी सिबा मुला बिसामा मेन्दोसोम घाइते ताबा मुला त्रिवेणी गाउँपालिका गा सिमका ग्याम दाङला तुलसीपुर क्यार निवान लाबा बलेरो जीप सडक घ्यालाम ग्याम ताइसी दुर्घटना ताबा हिनला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ सल्यान से पाङबा मुला दुर्घटना री त्रिवेणी गाउँपालिका डु पोखरीला ब्रे दिङला रेशम बुढाथोकी त्रिवेणी गाउँपालिका गा सिमकाला गाचुइ दिङला दिल्ली बहादुर ओली थिएन वडा नम्बर गा सल्लेला चुइब्रे दिङला विपना बुढाथोकी सिबा मुला जोङ प्रहरी गेजाङ सल्यान ला प्रहरी निरीक्षक थिएन सूचना अधिकारी देवराज भट्टराई से सुङ्बा अनुसार गम्भीर घाइते ताबा मेन्दो सोमलान सल्यान जोङ अस्पताल जी मान लमन लामा सिबा हिला चुराङ लासिन सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका सोम
काटके दि मोटरसाइकल दुर्घटना तामा मेन्दोगीका झामे कोला सिबा मुला प्रहरी से पाङ बन्सार तिनी त्रिवेणी गाउँपालिका सोमरी मोटरसाइकललाई लिचा खेबा दाङला शान्तिनगर गाउँपालिका गिक पेदी स्योङ दिम ताबा सोमची घाँदिङला जिता केसी से क्वान्बा सल मोटरसाइकललाई लिचाला चक्कारी बेरदिबा लिचा मोटरसाइकल ग्याम पल्टिदिबा मुबा होजा धुरी सल से लतार दिसी बोरबान लामा केसी घटना ताबा घ्लारिन सिबा मुला बिसी जोङ प्रहरी गेजाङ से पाङबा मुला जोङ प्रशासन गेजाङ झापा से युलबाङ परिचय पत्र थे।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल मध्य प्रदेशमे कृषि आ इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालनमे अनारल मन्त्रालय अध्ययन कऽ रहल बतौलनि अछि। मन्त्री पोखरेल आइ भिन्सर लहान स्थित जे एस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस लहानक अनुगमन निरीक्षण करैत ई बात बतौलनि। मध्य प्रदेशक कृषि आ इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन करबाक लेल सिराहाक लहान क्याम्पसमे पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार रहलाक कारणे एहि क्याम्पसमे सेहो कृषि आ इन्जिनियरिङ संख्या थपल जा सकबाक ओ बतौलनि। राजर्षि जनक विश्वविद्यालयसँ सम्बन्धन लग कृषि आ इन्जिनियरिङ संख्या सञ्चालन करबाक लेल आइएसओ स्वयं पहल करबाक मन्त्री पोखरेल बतौलनि। लहान नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 स्थित श्री बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालय बस्तीपुरक भ्रमण करैत 2004 सालमे स्थापित एहि विद्यालयक पुरान साँख फिरता करबाक लेल परिवर्तित समानुकूल विज्ञान आ प्रविधियुक्त सुविधा सम्पन्न बनेबाक लेल सिराहाक एक के प्रतिनिधि सभा सदस्य बबलू गुप्ताक पहलमे एहि क्षेत्रमे दोसर पुरान विद्यालय हनुमान शारदा माध्यमिक विद्यालयके स्तरीय बनेबाक मन्त्री पोखरेल बतौलनि। सिराहा एक के सांसद बबलू गुप्ता एहि क्षेत्रक दक्षिणी क्षेत्र में भगवानपुर गांव पालिका हनुमान शारदा माँ विनरवा आ लहान 14 स्थित श्री बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालय बस्तीपुर आ भगवानपुर गांव पालिका में रहल 2037 साल में स्थापित दोनों पुरान विद्यालय के स्तरीयकरण करबाक चुनावी वाचा पूरा करबाक हेतु स्वयं लागल बतौलनि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल नेपाल चीन संबंध के परंपरागत सीमा व्यवस्थापन के परिधि से ऊपर उठाबैत पर्यावरणीय सहकार जलवायु सुरक्षा प्रविधि व्यापार आ पूर्वाधार विकास में आधारित रणनीति के साझेदारी के रूप में आगू बढ़ाओल जेबाक बात बतौलनि अछि। फाउंडेशन फॉर पीस डेवलपमेंट एंड सोशलिज्म द्वारा आयोजित काष्ठमंडप संवाद श्रृंखला अंतर्गत नेपाल चीन संबंध सहकारक विस्तारित आयाम विषय कार्यक्रम में वो भोटे कोशी हाल के बाढ़ सौ नेपाल आ चीनक बीचक सीमा केवल राजनीतिक सीमा रेखा निभक साझा पर्यावरणीय नियति जोड़बाक क्षेत्र भेल स्पष्ट कलक अछि। एहि भादव 10 गते के भोटेकोशी बाढ़ के हिमालयन सुनामी के संज्ञा दैत परराष्ट्र मंत्री विपद पश्चातक उद्धार में चीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराओल आकस्मिक सहयोग प्राविधिक सहायता तथा जल विज्ञान संबंधी समन्वय प्रति आभार व्यक्त कलनि। ओ हिमालय के विगत में जका अवरोध आ विभाजन के रूप में निर्भ साझा पर्यावरणीय संपदा आ संरक्षण के क्षेत्र के रूप में ले जेबाक बात पर जोर दलनि। मंत्री खनाल हिमताल विस्फोट अनियमित मौसम आ भूस्खलन सन सीमा पार प्रभाव करवला विपद न्यूनीकरण के लेल रियल टाइम सैटेलाइट तथ्यांक आदान प्रदान संयुक्त मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकास कैल जेबाक प्रस्ताव कयलनि। नेपालक लेल चीनिया राजदूत चांग माओमिंग चीन आ नेपाल हिमालय के पारिस्थितिकीय प्रणाली साझा भेलाक कारणे जलवायु परिवर्तन के चुनौती के सामना करबाक लेल दुनू देश एकताबद्ध भऽ कऽ एहिठाम ठाढ़ हेबाक बात पर जोर देलनि। ओ बाढ़िसँ भेल क्षति प्रति दुख व्यक्त करैत चीन नेपाल के उपलब्ध कराओल सहयोग संबंध में जानकारी करौलनि। राजदूत चांग विपन्न चीन आ सरकारक दिशसँ नेपाल के ड्रोन वैली ब्रिज डीएनए परीक्षण उपकरण आ उद्धार सहित नाव सँ 5 खेप राहत सामग्री उपलब्ध कराओल तथा सुरंग भीतर के उद्धार डीएनए पहचान आ फॉरेंसिक पहचान में विशेषज्ञता हासिल कयल 24 गोटे बिग पठाओल जानकारी दलनि। भोटे कोशी बाढ़ में मृत्यु भेल व्यक्ति के लाश पहचान के लेल संकलित नमूना के आधार पर अखन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में धमाधम डीएनए परीक्षण भ रहल अछि। नेपाल प्रहरी केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला आ खुमलटार स्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट के प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण भ रहल केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफले जानकारी दलनि। सब पहचान के लिए संकलित डीएनए नमूना में कोनो त्रुटि नहीं हेबा सन सूक्ष्म रूप में परीक्षण कार्य आगू बढ़ाओल गेल। नेपाल प्रहरी विशेषज्ञ टोली के सहयोग करबाक लेल भारत चीन दक्षिण कोरिया आ सिंगापुरक बिग नेपाल आयल अछि। ओ कहलनि प्रहरीक विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भारतीय कोरियाली तथा खुमलटार स्थित प्रयोगशाला में भारतीय आ चीनिया टोली सहयोग कऽ रहल अछि। डीएनए परीक्षण के लेल 4 मशीन संचालन में लाओल गेल अछि। ई मशीन आवश्यक तैयारी पश्चात 90 मिनट में 1 नतीजा निकालत अछि। दोसर नमूना के परीक्षण के लेल एहि मशीन के पूर्ण रूप में निर्मलीकरण कयल जेबाक अछि। मृतक के हड्डी दाँत सँ डीएनए परीक्षण करैत काल 4 धरि लगबाक विशेषज्ञ चिकित्सक के कथन अछि। दाँत आ हड्डी सँ डीएनए निकलला पर एहि अंक मे
गर्दा थाल पानि रहला कारणे ओहिके ओहि हटेलापर मात्रे केमिकलमे राखि कऽ 72 घंटा पश्चात मात्रे प्रक्रियामे लऽ जा सकबाक समय अवधि रहल अछि, तैँ विलम्ब भऽ सकबाक ई कहलनि। शनि दिन अपराह्न धरि भेटल आ एहि लाशके पहचानके लेल DNA नमूना संकलनसँ आवश्यक प्रक्रिया पूरा कऽ 1230 टा लाश माटिके नीचा व्यवस्थापन कयल गेल अछि। लाश पहचानक लेल मृतकके 1286, आफन्तके 1779 मिलाकऽ कुल 3065 DNA नमूना संकलन कयल गेल अछि। एखन धरि लगभग 400 अधिक नमूनाके DNA परीक्षण कयल गेल अछि। कतेको नमूनाक पुनः परीक्षण कयल जयबाक अवस्था अयबाक विज्ञक कथन अछि। हड्डी दाँतके लगभग 30% नतीजा दोहरेबाक अनुमान लगाओल गेल अछि आ भेटल लाशके नमूनासँ यथाशक्य DNA परीक्षण करबा सन काज भऽ रहल प्रवक्ता काफले बतौलनि। भोटे कोसी विपद पश्चात खोज उद्धार सब पहचान आ व्यवस्थापनके प्राथमिकतामे राखि प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की पहल लऽ रहल बताओल गेल अछि। DNA मैचिंग करबाक लेल कोडिस सॉफ्टवेयरके प्रयोगमे भेटल लाश आ हरा रहल निकटके आफन्तके नमूना संकलनके DNA मैचिंग करबाक लेल कम्बाइंड DNA इंडेक्स सिस्टम कोडिस सॉफ्टवेयर प्रयोगमे आनल गेल अछि। मृतकके आफन्तके DNA निकालि कऽ सॉफ्टवेयरमे रखलाक बाद मैचिंग करबाक थिक केंद्रीय प्रवक्ता प्रहरी प्रवक्ता काफले बतौलनि। कोडिस अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर थिक। ई सॉफ्टवेयर मृतक आफन्तके DNA के रिपोर्ट रखलाक बाद ई सिस्टमसँ मैचिंग भेल देखबैत अछि, ओ कहलनि। तकर बाद संबंधित व्यक्तिके आवश्यक कागजातके आधार पर ई लाश निकालि कऽ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास आ कानून अनुसार हस्तांतरण करब। DNA परीक्षणके काजके यथाशक्य जल्दिए सम्पन्न करबाक लेल प्रहरीक एहि सम्बन्धी सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालित कयल गेल अछि। प्रहरीक सभ जनशक्तिके कोनो छुट्टी नहि दऽ कऽ 24 घंटा ड्यूटीमे खटाओल गेल अछि। DNA प्रोफाइलिंगमे स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्तिके सहयोगमे लेल गेल अछि आ विदेशी जनशक्ति सेहो नेपाल आयल अछि, ओ कहलनि। एहिके लेल नेपाल सरकार आवश्यक स्रोत साधनके व्यवस्था कऽ देलक अछि। मृतकके लाश भेटबाक क्रम बढ़ि रहल आवश्यक उपकरण आ जनशक्तिके अभावसँ प्रहरीके चुनौती दऽ रहल अछि। सातो प्रदेशमे विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमे आनल जा सकला पर ई चुनौती कम होयत। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला समाखुशीक मुख्य प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक योग बहादुर पाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रसँ संकलित मृतक आ आफन्तसँ संकलित नमूना अयबाक क्रम जारी रहल बतौलनि। संकलित नमूनाके सुरक्षित भंडारण करबाक सङ्गे परीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा कऽ DNA परीक्षणमे होरात्र खटि कऽ काज कऽ रहल ओ बतौलनि। किछु लाशके उठाछाप निकालने छी। आइके प्राविधिक रूपांतरणके कोन कोन भऽ सकैत खोजी कऽ रहल छी। सरल लाशके उठाछाप नहि लऽ जा सकैत अछि, एहिठाम सेहो कठिन होइत अछि। उठाछाप वेरीफाई करबाक लेल प्रहरी राष्ट्रीय परिचय पत्र सहितक प्रणालीसँ सेहो जैविक विवरण लऽ रहल अछि, ओ जानकारी देलनि। थुनुआके प्रहरीसँ बात कऽ छोटा आ छोड़ा देव कहिकऽ मुद्दा दर्ता नहि होमय देव कहिकऽ रकम वसूली कयल आरोपमे रोहतके गरुड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के श्रीपुरके स्थानीय शेख हुसैन पकड़ल गेल अछि। प्रहरीके नाम पदके दुरुपयोग कऽ 1,00,000 टका वसूली कयल आरोपमे इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ाक टोली हुसैनके पकड़लक अछि। ओकरा विरुद्ध ठगी सम्बन्धी कसूरमे मुद्दा दर्ताके जिला अदालत गौरसँ म्याद लऽ कऽ थप्पड़ अनुसन्धान भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ाक प्रहरी नायब उपेक्षक शंकर प्रसाद आचार्यके अनुसार प्रहरी ऊपर दुर्व्यवहार कयल आरोपमे पकड़ल गेल रमजान मियाँके छोड़ा देव कहिकऽ हुसैन ओकर श्रीमतीसँ 1,00,000 टका लेल आरोप अछि। प्रहरीके नाममे रकम वसूली करबाक कार्य गंभीर विषय थिक। पीड़ितके जाहिरीके आधार पर पकड़ि कऽ जिला अदालत गौरसँ म्याद लऽ कऽ अनुसन्धान भऽ रहल DSP आचार्य बतौलनि। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा विभिन्न मिति आ स्थानसँ हरायल 20 मोबाइल फोन खोजी कऽ सम्बन्धित धनीके बुझौलक अछि। विभिन्न स्थानसँ मोबाइल फोन हरायल गेल रोहतके इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ामे प्राप्त निवेदनके आधार पर प्रहरी खोज तलाश आगू बढ़ौने छल। रेडियो नेपालसँ सुनै छलहुँ, मैथिली भाषामे समाचार समाप्त भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटेकोशी बाढ़ प्रभावितों के उद्धार और लापता लोगों की खोज और व्यवस्थित बनाने के लिए नेपाल पुलिस ने टिमुरे से त्रिवेणी तक विशेष अभियान किया शुरू। बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए 3065 डीएनए नमूने किए गए एकत्र। हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा आपदा न्यूनीकरण के लिए नेपाल और चीन के बीच सहयोग आवश्यक है, पर राष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल का कथन। सल्यान में हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत। और दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। सम्मेलन का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं बल्कि अलग पहचान बनाना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन। अब समाचार विस्तार से। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित लोगों के उद्धार तथा लापता लोगों की खोज को व्यवस्थित बनाने के लिए नेपाल पुलिस ने रसुवा के टिमुरे से नवलपरासी के त्रिवेणी तक के क्षेत्र में विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत खोज तथा उद्धार में कुत्तों का इस्तेमाल, होल्डिंग सेंटर का प्रबंधन, समुदाय पुलिस साझेदारी कार्यक्रम, अपराध नियंत्रण तथा अनुसंधान, राहत वितरण तथा पुनर्स्थापना, डीएनए प्रोफाइलिंग और यातायात प्रबंधन जैसे विषयों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बाढ़ के कारण भोटेकोशी और त्रिशूली के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर बह गए या लापता लोगों के जीवित होने की संभावना को प्राथमिकता देते हुए उनके उद्धार तथा खोज के लिए संबंधित इकाइयों को निर्देश दिया गया है। मिले हुए शव या शरीर के अंगों का मुचुलका सहित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उनका उचित प्रबंधन करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की संपत्ति, नकदी, सोने चांदी, बैंक कार्ड और महत्वपूर्ण सरकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज मिलने पर उन्हें संबंधित पालिका को सौंपने का आग्रह किया गया है। भोटेकोशी बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए एकत्र किए गए डीएनए नमूनों की जांच तेज कर दी गई है। नेपाल पुलिस की केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और खुमलटारी स्थित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट की प्रयोगशाला में डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। नेपाल पुलिस के केंद्रीय प्रवक्ता वी नारायण काफले के अनुसार डीएनए जाँच में भारत, चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञ भी सहयोग कर रहे हैं। अब तक मृतकों के 1286 और उनके परिजनों के 1779 कुल 3065 डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें करीब 400 नमूनों की जांच पूरी हो चुकी है। शवों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण के अलावा फिंगरप्रिंट और तस्वीरों का मिलान भी किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस ने कोडिस और डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू किया है। डीएनए जांच को तेज करने के लिए हचौरा में भी एक नई प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है, जिसके एक सप्ताह के भीतर संचालन में आने की उम्मीद है। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद उत्पन्न होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नेपाल पुलिस अस्पताल महाराजगंज ने नुआकोट में 5 बिस्तरों वाला स्थायी फील्ड अस्पताल शुरू किया है। त्रिशूली नदी में आई बाढ़ के कारण त्रिशूली अस्पताल से संपर्क बाधित होने के बीच बाढ़ के बाद फैलने वाली संक्रामक बीमारियों को रोकथाम को ध्यान में रखते हुए नेपाल पुलिस ने बिदूर में 5 बिस्तरों वाला लेवल 1 अस्पताल संचालित किया है। नेपाल पुलिस अस्पताल में कार्यरत पुलिस नायब महानिरीक्षक दामोदर पौड़ेल के अनुसार अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से 2400 घंटे आकस्मिक सेवा, ओपीडी, वार्ड, प्रयोगशाला और दवाइयों सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्या सेवाएं आम लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने नेपाल चीन संबंधों को पारंपरिक सीमा प्रबंधन से आगे बढ़ाते हुए पर्यावरणीय सहयोग, जलवायु सुरक्षा, प्रविधि, व्यापार और पूर्वाधार पर आधारित रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित करने पर जोर दिया है। काठमांडू में आयोजित काष्ठ मंडप संवाद कार्यक्रम में उन्होंने हालिया भोटेकोशी बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि नेपाल और चीन की सीमा केवल राजनीतिक सीमा नहीं बल्कि साझा पर्यावरणीय नियति से जुड़ा क्षेत्र है। मंत्री खनाल ने हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम और भूस्खलन जैसी सीमा पार आपदाओं से निपटने के लिए वास्तविक समय के उपग्रह डेटा का आदान प्रदान, संयुक्त मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हिमालय और दोनों देशों को अलग करने वाली बाधा की बजाय साझा पर्यावरणीय विरासत के रूप में देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में नेपाल के लिए चीनी राजदूत चांग माओमिंग ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग आवश्यक है।
आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।

0: नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। सल्यान में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में चार लोगों की मौत हुई है। त्रिवनी गांवपालिका 5, सिमक में बोलेरो जीप में 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में 8 वर्षीय रेशम बुराथोकी, 18 वर्षीय विपना बुराथोकी और 50 वर्षीय दिली बहादुर वली शामिल है। दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। इसी तरह त्रिवेणी गांवपालिका 3, टाटके में मोटरसाइकिल दुर्घटना में करीब 35 वर्षीय जीता केसी की मौत हुई। पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल के पीछे बैठी केसी का दुपट्टा पिछले पहिए में फंस गया, जिस वजह से सड़क पर गिरकर घसीटती चली गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जाँच शुरू कर दी है। भोटिकोशी बाढ़ से फुरके खोला पुल बह जाने के बाद वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल हो रहे परेवा टार मास्टार सड़क पर आज से समय निर्धारित कर एक तरफा यातायात शुरू किया गया है। जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक गलछी मास्टार से परेवा टार होते हुए धादिंग बेसी की ओर वाहन चलेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक धादिंग बेसी से परेवा टार होते हुए मास्टार गलछी की ओर वाहन चलेंगे। सड़क संकरी होने के कारण दोनों दिशाओं से एक साथ वाहन चलने में कठिनाई होने के बाद ये व्यवस्था लागू की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। 2 दिवसीय 18वां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार, बहुपक्षीय सहयोग, व्यापार और वैश्विक दक्षिण की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा शुरू की है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई है और समूह किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की सोच रखता है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए सहमति के आधार पर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब ब्रिक्स की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने वैश्विक दक्षिण को केवल नियमों का पालन करने वाला नहीं बल्कि वैश्विक नियम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने वाला पक्ष बनाने पर जोर दिया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटिकोशी बाढ़ प्रभावितों के उद्धार और लापता लोगों की खोज को व्यवस्थित बनाने के लिए नेपाल पुलिस ने टिमुरे से त्रिवेणी तक विशेष अभियान किया शुरू। बाढ़ में मारे गए लोगों की पहचान के लिए 3065 डीएनए नमूने किए गए एकत्र। हिमताल विस्फोट, अनियमित मौसम तथा आपदा न्यूनीकरण के लिए नेपाल और चीन के बीच सहयोग आवश्यक है। परराष्ट्र मंत्री सुशील खनाल का कथन। सल्यान में हुई 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत और 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। सम्मेलन का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं बल्कि अलग पहचान बनाना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।